नागरिक गुलाम नहीं पेश कर जा रहा है। ये रिपोर्ट शांतमई ढंग नाल रोस प्रदर्शन करना हर भारतीय नागरिक का जमहूरी हक है, जिस ते सुप्रीम कोर्ट ते वक वक हाई कोर्टा वालों वार वार मुहर लगाई गई है कि महज सरकार अते सत्ताधारी पार्टी की आलोचना करन बदले किसी प्रदर्शनकारी ते FIR दर्ज करना ते उस दे शहर विच वड़न ते पाबंदी लगाना पुलिस का जायज़ कदम मनिया जा सकता है। बंबई हाई कोर्ट का जवाब बिल्कुल स्पष्ट है, नहीं। एक सियासी कारकुन खिलाफ मुंबई पुलिस वालों जारी शहर बदरी दे हुक्मां नूं रद्द करदिआं हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि भाजपा की अगवाई हेठली केंद्र सरकार के फैसलों खिलाफ मोर्चा खोलना या मुजाहरा करना अपने आप विच कोई अजिहा आधार नहीं हो सकता जिस कारण किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारां ते डाका मारिया जाए। जस्टिस माधव जे जामदार की यह तिखी टिप्पणी के नागरिकां नूं सरकार के गुलाम नहीं बनाया जा सकता यकीनन महाराष्ट्र तो पार पूरे मुल्क विच दूर तक गूंजेगी। असहमति जताना कोई गुनाह नहीं है, यह संविधान की धारा 19 तहत मिली हुई भारत के संविधान अनुसार अपने मन की गल कहण की आजादी का ही एक हिस्सा है। हिंसा या किसी वड्डे खतरे के पुख्ता सबूतों तो बिना महज विरोध नूं अमन कानून लई खतरा मान लेना उस आजादी का गला घुटन वर्गा है जो किसी लोकतंत्र नूं तानाशाही राज तो वखरा करदी है। हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही नोट किया कि पटिशनकर्ता खिलाफ दर्ज कीतियां गईयां FIR मुख तौर पर मुजाहरियां दौरान लागू पाबंदियां धारा 144 आदि की उलंघना नाल जुड़िया हुई सन जो कि कानून मुताबक मामूली जुर्म की श्रेणी में आउंदियां हन। अजिहे निगूणे दोषां दे आधार ते किसी व्यक्ति नूं पूरे एक साल लई उसदे अपने ही शहर विचों शहर बदर कर देण वाली वड्डी सज़ा नूं किसी भी तरह जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। जस्टिस जामदार का यह साफ साफ कहना भी उन्नी ही अहमियत रखता है कि पुलिस लोगों की सेवक है ना कि सियासी लीडर की गुलाम। उन्होंने हासे हासे विच पटिशनकर्ता यह सलाह भी दे दी कि वह किसी दूजी पार्टी विच चला जाए ता जो सरकार की वाशिंग मशीन विच पै के उसके सारे केस आपे धोते जाण। उन्हां दी ए गल अजकल दी दल बदली वाली गंदली सियासत दी असलियत नूं बयान करदी है। ये फैसला वेले सिर याद आउंदा है कि नागरिक कोई प्रजा नहीं हन जिन्हां नूं खामोश कर दिता जावे, वह गणराज दी प्रभुसत्ता संपन्न आवाज हन। ये सी प्रोग्राम दे विच इक रिपोर्ट। चलो हुण सुणदे आं इक होर गीत।

दोस्तों इस गीत दे विच एक मुटियार अपने घर वाले दी हसबैंड दी मेहनत करती है, रिक्वेस्ट करती है कि मेला लग्या होया मैनू तू कल्ली नू घर छड़ के क्यों जा रहा, मैनू भी उत्थे लैके जा। पर जदों मेले च पहुँच जांदे आ, इह तों अगली गल की हुंदी है, मेले च पहुँच के की हुंदा